बुझै होवे सचियार तवले ऊपर किता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जियो जात रंगा के नाम सब ना लिखिया उड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया किता होए किता तान सुआले हो रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ इको कुआओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुखवीद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भाकसार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार

असंख मूर्ख खांद कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल बाढ़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़ियार कूड़े फिराए, असंख मलेस माल भाख खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार,

सगल समगरी तुम्हारा सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञा तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम्हारी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए फरंगत गुरते अमरदास रामदासा हुई सहाय अर्दन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए श्री हर कृष्ण ते आईया जिह डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनाउन दयावै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पित्र पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौह साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई ते गवाही देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग नभाई तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां प्राचीन अते वर्तमान समें दे समूह शहीदां दी पित्तर कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे पितर दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पादा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो जी। हे नमाणियां दे माण सतगुरु नेताणियां दे ताण सतगुरु गरीब नूं आज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप जी की महान कृपा होई गरीब नूं आज पातशाह संध्या वेले आप दी पित्र हजूरी दीवान सजे होए दीवाना विच सौदा राय राज साहब की पावन गुरबाणी दे जाप आरती आरती दे कीर्तन गुरमत विचारां शब्द कीर्तन आनंद साहब की बाणी पढ़ी गई पातशाह पढ़ी सुनी बाणी का भाव दर आईया संगतां दे हिरदयां विच वसाउणा भुल चुक की खिमा करनी चढ़दी कला करनी बेअंत संगत आप दे चरण परस रही है सतगुरु कदम लेखे चलाउणे सेवावां भेटावां अपने चरणों में दर प्रवान करनी अपने दरों करो सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शिश करके सतगुरु जी नवाजना समूह टहलीए सेवादारा दे सिर ते मेहर भरे हाथ करके दर कर दी सेवा सतगुरु आप प्राप्त करदे रहना जग जलंधा रखदा अपनी कृपा धार जित द्वारा उभरा तिता लिहो उबार सतगुरु संसार विच सुख शांति अमर सद्भावना मुहब्बत दी सान बरकरार रखनी पातशाह जी आप जी दे दर करदे सेवादार भैन जी वालों सरदार दिगवीर सिंह दे कारज पूरे होण दी खुशी अंदर और उन्हां दी धर्म पत्नी भैन जी गुरदीप कौर दे कारज पूरे होण दी खुशी अंदर सतगुरु आप जी का कोटान कोटान शुकराना किया जा रहा है धनवाद किया जा रहा है सरदार दिगवीर सिंह ते बीबी गुरदीप कौर जो कनेडा विच ने सतगुरु

पूर उलक तुलखे गुर पाया मन हार ले मंडल मंडाहे कर साधु दिले पन वडाहे कर डंडौत पन वडाहे रहाओ साकत हर साधना जानिया तिन अंतर होवे कंडाहे ज्यों ज्यों तिलै चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडाहे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडाहे अविनाशी परग पाया परमेश्वर वासो खंड ब्रह्मंडाहे हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे।

कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना न जाने मेरा वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती समर कै गुरु नानक ले ते आए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर आए श्री हर कृष्ण जी ते आए जिस जिठिया सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कहना उन्हें दावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहेब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सभी थाई होना जी सहाय। दसा पाशन जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन द्वारा अंतर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। हे निमाणे दिमाणे ताणे धन उठा जोड़ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी चरणा कमला उच्च दास वड्डी बेनती है। इस वेले संध्या समय के दिवाना की समाप्ति उपरंत आप जी पावन सरूपा की सेवा हुए नाल सुहेला साहब जी के बाणी जाप हुए हैं। सेवा नमाद्या बाणी पढ़द जाने अणजाने बेनत प्रकार दुला गलतियां हो जाए हैं। आप जी बख्शन हार हो बख्श लेना जी। अगे तो समत बख्शिश करके आप जी ने अपनी सेवा आप ही लै लेनी। कृपा करने जी समूह संगतान के सिर से मेरा प्रे हाथ रखना दरों करो। गुरसिखी जी उन्होंने नाम बनी दाता बख्शिश करके अपनी चरणा कमना जोड़ के रखना जी। इस वेले आप जी की कृपा मेरा सदका चार पै देना इस सुखा नाम बतीत हो चार पै रहना ही भाणे में बतीत करने इसलिए कृपा करो जी। प्रकाश स्थाना तो निज स्थाना वाल चाले पाने की आग्ञा बख्शिश करो। राह पेंडे में अपना सत्कार आप करवा लेना कृपा करने अंग संसाइन चढ़ दी किला जुड़कने से ही प्यारे मेलो जिन्ना मिले आप जी का नाम जितया मैं नानक नाम चढ़ दी कला तेरे भाणे सरबदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

तिन का नहीं पत्यारा, चेत चेत चेत होय रहो तौले परगास हो जा रहा। नौ कर देख जो कामन भूले, बस्त अनूप ना पाई, कहत कबीर नवे कर्म से दसवें तत् समाई गौड़ी। माई मोहे अवर ना जान्यो आनाना, शिव सन का जास गुन गावे तास बसे मोरे प्राणाना। राहो हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमित, गगन मंडल में ध्यान आना, बिखे रोग पै बंधन पागे, मन निज कर सुख जानाना। एक समत रात जान मान, प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पे मन बासन त्याग, कट्यो अभिमान आना। जो जन गाय त्याय जस ठाकर, तास प्रभु है थानाना। ते बड़ पाक बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथानाना। काट सकत शिव सहज प्रगास्यो, एक एक समानाना। कह कबीर गुर पीठ महासुख, परमत रहे मन मानाना। राग गौड़ी पूर्वी बावन अखरी कबीर जियो की।

तप बंधावन जचा जो तन जीवत जरावे जो बन जार जोगत सो पावे अस जर पर जर जर जब रहे तब जाए जोत उदारो लहे चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना रहो चजक नाही परवाना कत चख चख च औरन समझावा चगर किए चगरो ही पावा जन्या निकट जो काट रहो दूर कहा तज जाए जा कारण जग टूंढ्यो नेरो पायो ताए टट्टा बिकट काट कट माई खोल कपाट महल के ना जाई दीख

दुरमत मन करे गुर प्रसाद वसे मन आए दुख नेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवर को साच ना दे जे किसी दे वखाणे नानक आगे पूछना ले आसा मल्ला पहला ताल मदीरे कड़के काट दोलक दुनिया बाजे वाद नारद नचे कलका पाओ जति सती कह राखो पाओ नानक नाम मिटो करबान बंदी दुनिया साहब जान रहाओ गुरु पासो फिर चेला खाए ता प्रीत वसे कर आए जो सो वरिया जीवन खाण खसम पछाणे सो दिन परवान दर्शन।

नाद भिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए, मुक्तो रातो रंग रवानतो, राजन राज सदा विकसांतो, जिस तू रख है कृपा धार।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिवत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद

जप गोबिंद संगी सवतारे ओहे तनाही पंच बटवारे मन बच क्रम प्रभ एक त्याए सर्व हल सोई जन पाए तार अनग्रह अपना प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिन अवर ना कोई आद मद

0: नामे समस्ती स्वरूपे
1: भंगी परमाते समस्ती विभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजेश्वर परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वर परम युक्ते
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवेश कर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
1: नमो सहसांग नमो
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नाने
0: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग
1: नमो ईश्वर ईश्वर नमो तंत्र तंत्रंग
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे रूपे समस्तुल निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्ध दाबृद कर्ता
1: अदोर्दे अर्धंग गंगुहर्ता
0: परं परम परमेश्वरं प्रोच पालंग
1: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग
0: अच्छेदीय पेदीय नामंग कामंग
1: समस्तो पराजी समस्त
0: तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं
1: प्रभु है जू है देश है भेष है
0: जंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे
1: नमो

0: मुहूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
1: खेल खेल खेल खेल अनंत को ब्रेक
0: वे पेव ना जानी जे भेद और कतेब
1: रूप रंग ना जात पासो जानी के जेब
0: आत्मा ना जात जाकर जन्म

0: प्रकाश निज ननास राजान राज पानान पान
1: देवान देव महान
0: इंद्रान इंद्र बालान बाल
1: रंगान रंगालान काल
0: अनपूत अंग आप अपंग
1: गदमिते बाल गुणगन उदार
0: मुंगन प्रणाम निर्भय निकाम
1: आदुत प्रजन मिद गद अखंड
0: आलिश्य कर्म दृश्य त्रम
1: सर्व

कामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चाच रीछंद ना सतराय ना मित्राय ना

0: दे। त्रिपुक्त स्वरूप है, छिज है, छूत है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है,
1: स्वरूप है, प्रजुक्त अनूप है,
0: निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है,
1: स्वरूप है, प्रजुक्त।

0: परमातंग परमाथे सदा सर्व साते
1: रूपे निर्वाद भूते
0: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
1: स्वरूपे सर्वंगी।

0: नमो आसासे नमो बांक बंके त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे।
1: अच्छी चंद अजय अलह।

0: प्रसाद पातशाही दसवी त्वे प्रसाद सवैये श्रावक सुत समूह सिद्धांत के देख फिरियो घर जोग जति के
1: सूर सुधार्दन सुत सुधाधिक्षण समूह अनेक मति के
0: सारे देश को देख रहे हो मत कौन देखे प्राण पति के
1: श्री भगवान की पाए कृपा हूँ तो एक रति बने एक रति के
0: माते मतंग जरे जसंग अनुपुतंग सुरंग सवारे
1: कोड़ तुरंग तुरंग सकुल पौन को गौर प्रजात निवारे
0: भारी भुजान के भूख बलि बिद्यावत शीस न जात बिचारे
1: तो कहाँ पे भूपत अंत को नंगे ही पाए पधारे
0: जीत फिरे सब देश किसान को बाजे ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसक ही है राज जारे
0: भूत पविक भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्री पद श्री भगवान भजे मेरे अंत को अंत के ताम सुधारे
0: तीरथ दान दया दंदान सु संजम नेम अनेक विशेष है
1: वेद पुराण देव पुराण जमीन जमान समान के पेख है
0: कौन हार जती जद्दार सब ऐसे विचार हजार के देख है
1: श्री भगवान भजे मेरे भूपत एक जीवन एक न लेख है
0: शुद्ध सिपा दुरंत बासु सास तना दुर्जान दलेंगे
1: हरि कुमार भरे मन में कर पर्वत पंख लेना लेंगे
0: तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निधान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बरियारप चारे सार की धार मछैया
1: तोरत देश मुलेंद मवासन माते की जान के मान मलैया
0: गाड़े गड़ान को तोड़न हार सु बातन ही चक चार लवैया
1: साहिब श्री साहब को शरणायक जाच अनेक सो एक दवैया
0: दानव देव फनन निसाचर भूत भविक भवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में तल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे
0: पुन प्रतापन बाढ़ जय धुन पापन के बो पुंज खपेंगे
1: सास मुह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक जपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नराधव जौन त्रिलोक को राज करेंगे
1: दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
0: ब्रह्म महेश्वर बिशन सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्री पद के प्रस है पागे
0: करेंगे कहां भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो
1: नाथ प्रयो लिए सास मुद्रण लोग गयो पर लोग गवायो
0: बास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ऐसे सुबैस बितायो
1: साज कहो सुन ले सबै जन प्रेम कियो तनहि प्रपायो
0: काहू ले पाहन पूछ धर्यो सिर

0: पाँच साइदस मी कबेव बाज बेंती चौपई हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो पति पारा
0: हमरे दुष्ट बह तुम काबो आप हाथ दे मोए बचावो
1: मोरू परिवार सेवक सिख सवे करता।

0: जज छनि पुजायो
1: आज देखे अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
0: नमस्कार ते सी को मारी सकल पुजाजन आप सवारी
1: सकल को सुख सुख दियो सतरंग को पल मोहबत कियो
0: कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछान
1: थी ते कंचर सुला सपा के

0: मातन प्यास दर्शन घड़ी को यार मिलावे माए
1: संत सहाई प्रेम के होतन के लगा पाए
0: मन रंग सुख सुख पाए दूजी नाही जाए
1: चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे।

राग सूही महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन सूख सागर कर कृपा उदर हर नागर मिथन मोह अगन सूख सागर कर कृपा उदर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम

0: साध की वरदा जाए अविवस, साध की वरदा जाए विस्थारी, जैसे कहते पार मूसा टुकावत काम नहीं गवारी। राव कर कृपा पार ब्रह्मस्वामी, ए बंधन छुटकारी, बूढ़ अंध नानक पव काढ़त साजना संगारी। तनारसी महला पंजवा, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, शीतल मंतन छाती, रूप रंग सुख तन जी का, पर्व मूर जाति, रसा राम रसायन माती, रंग रंगी राम अपने कै, चन कमल थाती। रहाओ जिसका साथ इन्हें रख लिया, पूर्ण प्रभ की पाती, मेल आपे सुखदाते, नानक राखी पाती। तनारसी महला पंजवा, दूध संसद ते निवरे परक प्रताप तुम्हारा, जो जो तेरे भक्त दिखाए वे तत्काल तुम मारा। निरखो तुमरी और हरनीत, मुआर सहाय हो दास कहो, कर गए उधरों मीत। रहाओ सुनी बनंती ठाकर मेरे, खसमाना करे आप, नान अंध पै दुख पागे, सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा,
1: कृपा कथा अवलोकन की नौ दास का दुख बदा रहे हो। हर जन राखे गुर गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बग शांत रहाओ। जो मांगे ठाकर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दा मुख ते जो बोले, इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवा, औखी कड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रत पाले। प्रभु सो लाग रहो मेरा चेत, आदि अंत प्रभु सदा सहाय, तन हमारा मीत रहाओ। मन बलास पै साहब की, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर, नानक पूर्ण पैज रखाई। तनार श्री महला पंजवा, जिस को बिसरे प्राण पत दाता, सोई गिनहू अपागा, चरण कमल जां का मन रागे, ओ अमर सरोवर पागा। तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस सीज गया सब तन ते, प्रीतम सो मन लागा। रहाओ जह जा पेखो तह नारायण, सगल कटा महतागा, नाम उदक पीवित जन नानक, त्यागे सब अनुरागा। तनासरी महला पंजवा, जन के पूर्ण होए काम, कली काल महा बिख्या मैं, लज्जा राखी राम। रहाओ सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, निकट न आवे जाम, मुक्त बकुंठ साध की संगत, जन पायो हर का ताम। चरण कमल हर जन की छाती, कोर सुख बसराम, गोविंद मोदर सिमरो दिन रैन, नानक साधु कुरबान। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवै, सिमरो तुमरा नाम। रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे, संतन का संग पाओ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸਵਸਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਧੰਤ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪਣ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਸਾਪਣ ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਸਭ ਥੋਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਜਾਚਤ ਸ਼ਰਮ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੋਖ ਰਹਾਉ। ਘੋਖੈ ਮੁਨ ਜਨ ਸਿਮਰਤ ਪ੍ਰਾਨਾ ਵੇਦ ਪਕਾਰੇ ਕੋਖ ਕਿਰਪਾ ਸਿੱਧ ਸੇਵ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੇ ਲੋਕ। ਆਨ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੇਤੇ ਬਨ ਹਰ ਬਿਨ ਹਰ

जियो। हर भगत सुहावी साचे पावी, पाए भगत प्रवराती। फिर रली आला जो बनबाला, जिस रावी रंग राती। गुरशब्द वगासी सौर वासी, फल पाया गुणकारी। नानक साच मिले वडियाई, फिर कर सोहे नारी। तनासरी संत महला चौथा, कर पहला

रहाओ। शोभा राय में बनयाई, अंत न काहूँ संग सहाय। पुत्र कलंतर लक्ष्मी माया, इनते कहो कबने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिना बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बिनता सुत देह गृह संपत सुखदाई, इनमें कस नाहे तेरो काल अवध्याई। अजामर गज गनका पतत कर्म कीने, ते उत्तर पार परे राम नाम लीनै। सूकर कूकर जोन पर मैं तो लाज न आई, राम नाम साढ़ अमृत काहे बेख खाई। तज परम कर्म बेदन खेद राम नाम लेहि, गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनार श्री बाणी भगत नाम देव जी की,

बलाए, हमरो करता राम स्नेही, काहे नए रे नर गर्भ करत हो, बिनस जाए चूठी देही रहाओ। मेरी मेरी कैरों करते दर्जोदन से पाए, बाहरे जोजन सतर चले था, देही गिरज न खाई। सर्व स्वयं की लंका होती, रावण से अधिकाई, कहाँ पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई। दुर्वासा सु करतठ गौरी, जादव ए फल पाए, कृपा करे जने अपने ऊपर, नाम देओ हर गुण गाए। दस बरागन मोए बस कीनी, पंचों का मिटनावो, सतर दोए परे अमृत सार, बिख कौ मार कडावो, पासे बहु नयावन पावो, अमृत बाणी करते विचरो, आत्म कौ समझावो रहाओ। बजर कुठार मोहे है सीना, कर मेहनत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो। इह संसार ते तब ही छुटो, जो माया ना लबटावो, माया नाम गर्भ जून का, तय तय दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पाओ, सगल चुकाई है कहत नाम, जो बाहर क्या भरमो, ये संजम हर पाई है। मारवाड़ जैसे नीर बाला, बेल बाला करहला, जो क्रंक निसनाद बाला, तो मेरे मर मैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो, अत रंग रूड़ो मेरू रमैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बाला, कुसुम्बास जैसे पवरला, जो कोहकल को अम्ब बाला, तो मेरे मन रमैया। चकवी को जैसे सूर बाला, मान सरोवर हंसला, जो तरणी को कंत बाला, तो मेरे मन रमैया। बारिक जो काओ जैसे खीर बाला, चात्र को मुख जैसे जल तराय, मछली को जैसे नीर बाला, तो मेरे मन रमैया। साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू बीठला, सगल भवन तेरु नाम बाला, तो नामे माना बीठला।

साई आड़ पैर हर त्याए के मन इस पजाई वड्डे भाग सत संग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोका पतत पनीत गोबिंद हे सर्व दुख निवारण है शरण सूर भगवान है जपंत नानक हर हरे हरे छड्यो हम आप लगड़ो चरणा पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रभ खंदिया पौड़ी मेलो दयाल तै पै द्वारिया रख लियो दीन दयाल परमत बहारिया भगत वसल तेरा बिरद हर पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिनो मुहे सारिया कर गया ले हो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालंग आश्रम गोपाल कीर्तन है नर्मलंग संत संगीन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चांदन सरद रुत मूल न मिटी काम शीतल सीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो भय माना टूट न आवे मूल संचा नाम धन संत जिना सुसंग पाइए वड्डे पौना आड़ पैर हर त्याय हर जस नित सोना सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिवत न माया भाए बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ू प्रभ आप जिन उपाय मेदनी नानक सो प्रभ जा पौड़ी जा प्रभ भय दयाल न व्यापे माया कोट अगा गनास हर एक त्याए आ निर्मल पै शरीर जन धूरी नाए आ मन तन पै संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सभाया सलोक गुर गोबिंद गोपाल गुर गुरपुर नारायण है गुर दयाल समरथ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाहो गुर बोए थे तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग हर जपै गुर कृपाल जपै ता अवगण सब छपै पार ब्रह्म गुरदेव नीचो ऊच थपै काट सिलक दुख माया कर लीने आप दसाए गुण गाए बेअंत रसना हर जसाए सलोक दृष्टंत एको सुनयंत एको वर्तंत एको नर हर हे नाम दान जचंत नानक दयाल पुरख कृपा कर है हिक सेवी हिक समला हर एक सपै अरदास नाम अखर तन संचया नानक सची रास पौड़ी प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो सब किसे आपे आप दूजा कहाँ के हो आप करो प्रभ दान आपे आप ले हो आवन जाना हुक्म सब निचल तुद थे हो नानक मंगे दान कर कृपा नाम देहो जैत श्री बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाथ कछु न जानो मन माया के हाथ बकानो रहाओ तुम कहियत कहियत हो जगत गुर स्वामी हम कहियत कलजु के कामे इन पंचन मेरु मन जो बगारियो पल पल हर जीते अंतर पारियो
ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਦੁਖ ਕੀ ਰਾਸੀ, ਅਜੂ ਨਾ ਪਤਿਆਏ ਨਿਗਮ ਪੈ ਸਾਖੀ। ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਮਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੀਸ ਧਰਨ ਸਹਿਸ ਪਗ ਗਾਮੀ, ਇਨ ਦੂਤਨ ਖਲ ਬਦ ਕਰ ਮਾਰਿਓ, ਬਡੋ ਨਲਾਜ ਅਜੂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਓ। ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਕਹਾਂ ਕੈਸੇ ਕੀਜੇ, ਬਿਨ ਰਘੁਨਾਥ ਸਰਨ ਕਾਂ ਕੇ ਲੀਜੈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਰਹੇ ਨਾ ਸ

निर्मल होई है, तेरु रहे इहां उहां लोग रहाओ। चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग, छोड़ अपात बाज अहंकारा, मान सोई जो होगा, संत टैल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लखोगा, कहो नानक एक बिन दूजा, अवर न करने जोगा, टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो सरन तुहारे, मिले सूख नाम हर सोभा, चिंता लहे हमारी रहाओ, अवर न सूजै दूजी ठारे, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा सोड़ अलेखे सूटै, हम निर्गुणा लेहो अबारी। सदबग सिंध सदा मेहरवाना, सबना दे अधारे, नानक दास संत पासे परेओ, राख लेहो एह बारी। टोडी महला पंजवाय, रसना गुण गोपाल निद गायणा, शांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलायन रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायण, जन्म मरण दोहूं ते छूटे, भव जला जगत तरैण आए। खोई तो खोई तत् बचार्यो, दास गोविंद परायण आओ, अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रपै दयाला, शिव के बाण सिर काट्यो रहाओ, काल जाल जम जोहो न साके, सच का पंथा थाट्यो, खात खर्चत किसन खुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो, पसमा भूत होया खिन पीतर, अपना किया पाया, आगम निगम कहे जन नानक, सब देखे लोग सभाए। टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किलविख परे, साध संग भजन कर स्वामी, ढाकन को एक हरी रहाओ, अनिक सिंदर बहुत के छुटकत, थाम ना जाहे करे, जिसका बोए तिस अरादे, खोटे संग खराए, गली सर अठावत चाहे, वे उहां ही है तरे, जोर सकत नाने किस नाहे, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवाई, हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाव रहाओ, तीने ताप नवार नहारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिघन न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा, हर हर नाम सदा साधु जाप, तार अन ग्रह पार ब्रह्म स्वामी, वादी कीने आप रहाओ, जिसके से फिर तिन ही संभाले, बिन से सोग संताप, हा दे राखे जन अपने, हर हुए माई बाप, जी जंत हुए मेहरवाना, दया तारी हरनाथ, नानक सरन परे दुख भंजन, जांका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा, स्वामी सरन परो दरबारे, कोट पराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ, खोज खोज बहु प्रकारे, सर्व अर्थ विचारे, साध संग परम गत पाई है,